0: को नाथो त्यो
1: नाथो होइन ऊ मेरो हुने वाला श्रीमान हो म तिम्रो जङ्गली विवाह त के थाकिसके बस्दिन म मेरो घरमा

Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: थालो रह्यो नि के थाल खबर आज त तिमी साह्रै राम्रो देखेकी छौ त थाहा छ म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु
1: मिस्टर अजय हे दीपान रोहिणी से मेरी हो मेरी
2: ठिक छ रोहिणी हामी दुईजना जसलाई मन पराए नि हामी रिसाउँदैनौ
0: के तिमीहरू 15-20 वर्ष कुर्न सक्छौ
1: ओके रोहिणी
0: बाई।

सांदर फूड सांदर कैफे न्यू रोड काठमांडू सिटी चरण चौक गुणस्तरीय गहना का लागि देवी ज्वेलर्स चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 थानकोट बस पार्क सँगै छ सर्वत्र छ अनि स्वादिष्ट छ स्वास्थ्य झोल मोमो दानी इन्टरनेशनल प्राली चन्द्रगिरी काठमांडू

0: लाग्छ कि ब्रो?
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
0: राम्रोसँग ल गाइदिए,
2: साँच्चै
0: मुच्चै

Elembu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो साचो इसाई धर्म या कर्की सम्बन्ध निम्बा जय मसी तथा लासो नमस्कार कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ अर्थात नला विश्वासी चमक बसुगो अंक 10 रे रंगनिदा स्वागत मुला ना वियोग तामाङ तिनी गा रङदा राङला विश्वासला बारेरी लानन महत्वपूर्ण ताम जुगरी सेमुला चुरी येशु ख्रिस्ट छ्यामला राङला व्यक्तिगत सम्बन्ध समावेश मुला सासु ख्रिस्टेन विश्वास हाजीबाई धर्म आइन्बा चु जेकेन मण्डलीला सेवा गरेरी बो किन्बा भजन गोबा वा स्यान्दो सदस्य गरेदा परमेश्वर से राङदा मोलाम पिनबरी बिबारी जेखेन आइन्बा लानन निगदे मुला जो वर्षौं ग्याम मण्डली निभन मुला थेनिका दिदा मण्डलीला संगति देन अभ्यास कदेला बारेरी बेनन ताम था मुला तसै थेनी गदेसी मुक्ति याङला बिबा आरे थेनी गदे मध्ये लानन से इसु देन हाइमा व्यक्तिगत अन्तरक्रिया लबा आरे थेन दे थेनी गदेसी परमेश्वरला रङला लुई निर्देशित लाबरी पिन्बा आरे युहन्ना 10 अध्यायला 27 नाला युगदेशे नाला काई मोसेला ओछे नाई नोन थेनिगदेदा मोसेला मुला थेनिगदे गादेन छाम ब्रामुला रंग स्विमिंग पुल तबा ग्लारी निशु मुला बिबं क्लान बा बी मुशुला बिबा आहिन्बा रंग से दुई बिताबलाबारी ताम्बा वातावरण से रंगला आत्मिक स्थिति रंगनो निर्धारण आलामुला तिगै निगदेदा लागिरी येशु जेखेन थेनिगदेला लुइरी याकर्गी प्रसिद्ध व्यक्तिदो मुसुला जोला बारेरी थेनिगदे ताम लामुला तासै थेराङबा मि आइन्बा जोदेन थेनिगदेला घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध मुला थेनिगदे चुदा पछ्याव आलामुला थेनिगदे धार्मिक रीतिरिवाज गदे पालन लामुला जेरी इसाई धर्मला जेबात छाप लगावला मुला रंगला प्रार्थना रे थेनिगदेसी रंगसे लाबरे सेमला बारेरी परमेश्वर आशिष पिनबरे बिन्ती लाजिबा तामुला ना याङला प्रार्थना चुरङमा तादोला हे परमेश्वर ना दत्ते रंगला नच्छा नम्रतासी हाला ना नाला इच्छाला सट्टा रंगला इच्छा पुरा लाबरी सेमुला थेलिच्छा रंगसी चुदा न्यदोला रंग नाघ्याम तिगा सेम मुसुला प्रकाश 3 अध्यायला 20 च्यागो ना खालैला दिम्री खसी न्यमा चुदे खासै खालै मिसे नलगाई थेसी मृग डोङसी विषम ना दिम नङरी खाला ओछे थेनेन छ्याम चिसी चबा थुङमा लला थेसे नोन ना देन छोइ नोन चिसी चबा थुङमा लला येसु रङला तिमला मृग ढकढकती मुला परमेश्वर रङसी मण्डलीरी रोदा रूपतारा बारी हासुबा जेखेन सेम आलासु मुला परमेश्वर रङसे हरेक दिन लसुबा देनोन ताम्ला बो दोबारी सेम आसु मुला साँचो इसाई धर्म जीवनशैली हिम्बा हप्तारी तिराम उपस्थित तासेला मण्डलीला नाम्ती जेखेन आहिन्बा गेरी मुबा रङ रङला गे लजिबा बेला येसु देन ताबा पाङबरी सेम मुसु मुला रङला गे रोदेन हाइमा दमन देन बेनन ग्लारिताम पाङबरी हसुमला तिगा रङ येसु देन छ्याम ताबरी हरेक दिन दुई छुटप लबारी तयार मुसुला रङद ज्योति लानन प्रेम लबा प्रभु देन ताम लाबरी जोसे स्वेच्छेजी कष्ट भोगप्त हसुमला थेन दे रङला पाप लागिरी क्रुसी सिजी येसुला नच्छ रङद नम्र सोसुगो परमेश्वर द रङ देन पाङबरी पिन्सुगो थेन दे रङ सी लाभा बेनन महत्वपूर्ण निर्णय गरिदिँदा परमेश्वर द मार्गदर्शक लाभरी पिन्सुगो चु संसारी रङला आत्मिक लुई देन स्र शब्दी राज्यला रङला आत्मिक लुई पुरान्त जी
0: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।